सुने गुंग जो यहे सुर सुना पावई सुने मूड़ चितलाए चतुरता आवई दुख तरत पौ निकट न तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्र है ससपने जय हर सस फुन तीन कहे जय पाद्रव सुध अष्टमि रविवार तीर सत द्रव ग्रंथ सुधार सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आनियो रम रहीम पुराण कुरान नेक है मत एक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु पेद कहा हम एक न जनियो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानियो दोहरा सग

तीज आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सहती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया सबदोत गावो हरि केरा मन जनी वसाया।

दुख सब सरना अंगीकारो कार तेरा कारज सब सवरना सभनागा ला समरत स्वामी सुख्यो मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किच है जिसते है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा धारो सच नाम आधार बिराजन भूखा सब गवाया कर संत सुख मन आय वस्या जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटहो जस्तिया है वडियाइया कह नानक सुनो संतो सब तरो पियारो सचा नाम मेरा धारो वाजे पंच शब्द तित कार सपागे कर सपा